0: 8858022। दावत एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती आपके लिए लाए हैं £2,000 का हॉलिडे जीतने का मौका, साथ में 150 pounds के वन फॉर ऑल रेस्टोरेंट वाउचर्स। अभी एंटर कीजिए @winwithdawat.com या फिर इसका QR कोड आपको जहां भी नजर आए उसे स्कैन कीजिए। दिस कॉम्पिटिशन रन्स फ्रॉम 6th May to 6th August। यू मस्ट बी 18 or over टू एंटर, विथ वन एंट्री पर हाउसहोल्ड। T&Cs अप्लाई। विजिट winwithdawat.com और याद रखिए, राइस इजंट जस्ट राइस अंटिल यू ट्राइड दावत एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती।
1: अरे मुझे हेल्प कीजिए ना, मुझे कई गिफ्ट्स चाहिए।
2: तो वसीम ज्वेलर्स आए,
1: और शादी की ज्वेलरी भी चाहिए।
2: तो वसीम ज्वेलर्स आए,
1: और हमारे सोने की वैल्यूएशन।
2: तो वसीम ज्वेलर्स आइए, साउथ हॉल में 2 ब्रांचेस के साथ,
0: 90 and 130 द ब्रॉडवे साउथ हॉल। सबसे सोना सड़ा सोना
2: वसीम ज्वेलर्स।
3: नीड एनीथिंग फ्रॉम टेस्को? Like 3 for £8 on selected Tesco finest picnic food, such as burrata with semi-dried tomatoes or whipped feta and tabbouleh.
4: Club card accepted.
3: Because every little helps. Majority of larger stores ends 11th of October. Club card or app required.
5: Starling has been asking small business owners to share their best money habits. Up next is graphic designer Dean.
6: I'd say work with a team that's always up. It's handy when you're pulling an all-nighter.
5: That's why Starling's UK-based customer service team is available 24/7, so you can get business banking support whenever you need it.
7: Hello, you're through to Starling. How can I help?
5: Join over 500,000 small business owners banking with no monthly fees. Starling, good with money.
8: This is a national alert from Flixbus. We'd like to express... a few things, because it's time to move on from that ex.
9: Goodbye.
8: But don't let your plans get derailed. No, choose Flixbus for comfortable, affordable travel. Go on, give all your plans the light green. Switch to Flixbus.

पे चढ़ेगी क्या? 1 2 3 गाड़ी के बोनट से निकले परी, लौंडे आगे कहीं टिकते नहीं, बातें हैं कड़ी मेरी, लिख ले कहीं, चल निकले कहीं।

न्यूज में नाम आता हर वीक, फिर भी जहां से गुजरूं हर बंदी के मुंह से निकले चीख। हाथ पकड़ पर दिल न लगा, जो कहती है करके दिखा, सुनने में आया है तू मरती है हम पे, मर के दिखा।

0: Shabnam Sahi on Sunrise with Maharani on Sony TV. The gripping political Sony Live series that had millions hooked is finally on Sony TV, starring Huma Qureshi in most powerful role yet. Catch Maharani starting tonight 9 PM on Sony TV.
1: It is simple with Dimple. Self-drive cars, vans, 9 or 17-seater minibuses available to rent for leisure, pleasure, business or holiday at prices cheaper than the rest. And best of all, for this month only, an extra 10% off on all bookings at the weekends. That's right, Friday to Sunday, save an extra 10%. Hire for a day or longer for UK or Europe. T's and C's apply. It is simple with Dimple. Visit dimplemotors.co.uk or call 0208 205 1200 or WhatsApp 079. 951-885-022.
2: Treat your customers and your team to the rich, authentic taste of Royal Chai, their favorite chai anytime. Get Royal Chai vending machines free. Yes, absolutely free. Perfect for cafes, restaurants, offices, shops, petrol stations, and community spaces. Email info@royalchaivending.com. Royal Chai, brewed for business. T's and C's apply.
1: दावत एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती आपके लिए लाए हैं £2,000 का हॉलिडे जीतने का मौका, साथ में 150 पाउंड्स के वन फॉर ऑल रेस्टोरेंट वाउचर्स। अभी एंटर कीजिए एट winwithdawat.com या फिर इसका QR कोड आपको जहां भी नजर आए उसे स्कैन कीजिए। दिस कॉम्पिटिशन रन्स फ्रॉम 6th मई टू 6th अगस्त। यू मस्ट बी 18 और ओवर टू एंटर विथ वन एंट्री पर हाउस होल्ड। टीज एंड सीज अप्लाई। विजिट winwithdawat.com और याद रखिए, राइस इजंट जस्ट राइस अंटिल यू ट्राइड दावत एक्स्ट्रा लॉन्ग बासमती। आज भी जलसा, कल भी जलसा, हर मौके पे जलसा ही जलसा। घुघरा, मठिया, खाजली और जलेबी गाठिया का तो जवाब ही नहीं। मिठाई और फरसान के बाद शाह जलसा स्वीट्स एंड सेवरीज, 28 वॉटफर्ड रोड, वेम्बली। ओपन ट्यूजडे टू संडे।
3: दिल चोरी साडा हो गया ओए की करिए की करिए।
1: आफ्टर द फिनोमिनल सक्सेस ऑफ हिज 2024 यूके टूर, दिल चोरी साडा हो गया इज बैक। पेपेज पिरी पिरी प्रेजेंट्स एन अनफॉरगेटेबल इवनिंग विद द किंग ऑफ सोलफुल पंजाबी म्यूजिक हंसराज हंस लाइव इन लंदन ऑन संडे 11th अक्टूबर एट बेक थिएटर हेज UB3 2UE। डोर्स ओपन एट 6:30 PM।
3: जो सिल्ली सिल्ली आउंदी ए हवा।
1: एक्सपीरियंस द टाइमलेस हिट्स, द मैजिक voice and an evening full of emotion, nostalgia and entertainment, supported by Madhus. Book your tickets now from the Beck Theatre website or call 07850-742-143. That's 07850-742-143. Hansraj Hans live at Beck Theatre Hayes. Don't miss it. Radio partner Sunrise Radio, TV partner Punjab TV, brought to you by Samara Events UK.
4: Let's be real, I'm a catch. I'm funny, confident, handsome. But get to know me and you'll see my soft side. I'm always on the move, chasing sunsets, chasing vibes. I just want to find my perfect match.
5: How about these square frames?
4: Oh.
5: With mirror lenses?
4: Yeah.
5: Or perhaps a pink tint?
4: That's it.
6: At Specsavers, you can mix and match frames, tints and lenses to create your unique pair of sunglasses. And get £40 off reactions, mirror and polarizing lenses. Conditions apply. See in store for details.
7: ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਾਮੇਡੀ ਮੂਵੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਮੂਵੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਮੂਵੀ ਜਿਹਨੇ ਸਭ ਨੂੰ ਹਸਾ ਹਸਾ ਕੇ ਲੋਟਪੋਟ ਕੀਤਾ।
8: ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ?
7: ਉਹ ਮੂਵੀ ਜਿਹਦੀ ਸਟੋਰੀ ਨੇ ਬ੍ਰੇਨ ਰੋਟ ਕੀਤਾ।
8: ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ?
9: ਗਿੱਪੀ ਗ੍ਰੇਵਾਲ, ਬਿੰਨੂ ਢਿੱਲੋਂ, ਸਰਗੁਣ ਮਹਿਤਾ ਫੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਫ੍ਰੈਂਚਾਈਜ਼ ਕੈਰੀ ਔਨ ਜੱਟਾ 4, ਜਿੱਥੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਢਿੱਲੋਂ ਫੇਰ ਕਹਿਣਗੇ
10: ਪਰ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਕਾਲਾ ਕੋਟ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ।
7: ਦਿਸ 26 ਜੂਨ ਕੈਰੀ ਔਨ ਜੱਟਾ 4 ਦੇ ਨਾਲ ਥੀਏਟਰਸ ਹੋਣਗੇ ਲਾਫਟਰ ਦਾ ਸਟੇਡੀਅਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਫਿਲਮ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਲਾਫਟਰ ਦਾ ਫੈਸਟੀਵਲ ਹੈ।
11: This is a national alert from Flixbus. We'd like to express a few things because it's time to move on from that ex.
12: Goodbye.
11: But don't let your plans get derailed. No, choose Flixbus for comfortable, affordable travel. Go on, give all your plans the light green. Switch to Flixbus.
0: Shabnam Sahi on Sunrise with Maharani on Sony TV. The gripping political Sony Live series that had millions hooked is finally on Sony TV, starring Huma Qureshi in most powerful role yet. Catch Maharani starting tonight 9 PM on Sony TV.
8: Time check with Brightson Travel. Brightson Travel is giving away four amazing prizes in their 40th anniversary competition. Win holiday vouchers worth £2,000, a weekend in Barcelona, and much more. To enter, visit brightson.co.uk/win.
12: 10:50 on a Monday, aap sun rahe Sunrise Radio, Shabnam Sahi ke saath. The last Monday of the month. One more day to go, and then we're into July. Wrapping up this hour with Jo Jeeta Wahi Sikandar, Udit Narayan Sadhana Sargam, Pehla Nasha on the UK's biggest Asian mix. Welcome to the show.

टेकन फ्रॉम चांद मेरा दिल, तुषार जोशी। मेरे माहिया तेरे प्यार का मेनू जश्न मनावन दे, सजन मेनू इश्क निभावन दे। बेहद खूबसूरत ये गाना, इसे आप सुन रहे हैं सनराइज पर आज मंडे द 29th की सुबह शबनम साही के साथ। आपको द बिगेस्ट ग्रीन ऑन माय फेस मीना एंड सॉरी, थैंक यू सो मच फॉर द लवलीएस्ट बर्थडे कार्ड दैट वाज डिलीवर्ड अ फ्यू मिनट्स अगो। It says, for someone special on your birthday, may you always remember how very special you are to me. And then Meena says, thank you for being there in my good times and bad. You are the best. Thank you so much. My birthday starts this minute. Don't miss Southall Travel's special prices to India, Pakistan, the UAE, Thailand, Bali and Africa. For the best fares and 24/7 support, call 0208-574-8410 or visit southalltravel.co.uk today. Monday the 29th.

अपार शक्ति खुराना ऑन द वोकल्स विद लवजा। इसे आप सुन रहे हैं सनराइज पर आज मंडे की सुबह शबनम साही के साथ। क्लोजिंग द शो विद ब्यूटिफुल वर्ड्स ऑफ विजडम फ्रॉम एसएस इन ब्रिस्टल सुखी संधु हु सेज, Every morning you have two choices. You can either continue to sleep with your dreams or you can wake up and chase them. Thank you so much. My time is almost up. Nads is in for Kavita today. Apologies, Nads. Earlier I said Shivi. No, it's Nads. Wrapping up the show today with this beautiful song from Simba. Jahan bhi aap sun rahe hain, jo bhi is waqt kar rahe hain. Hope you're having a beautiful Monday. Apna khayal rakhiyega. Kal subah milte hain 9 baje.

0: Fitting quite nicely right here from the movie Crew. Sona kitna sona hai. Ulash in Toronto, correct answer. Sangeeta in Lancashire, you got it. Yes. You're saying Amir Khan, it's a wrong answer. Kareena Kapoor, not there. Ravina Tandon, not today. So remember the year 2000.
1: Don't miss Southall Travel's special prices to India, Pakistan, the UAE, Thailand, Bali and Africa. For the best fares and 24/7 support, call 0208-574-8410 or visit southalltravel.co.uk today.
0: And also, if you know the movie that today's trio is taken from, feel free to suggest a song to wrap it all up with as well, if you have a favourite from that film. In the meantime, let's get another listen to your trio.
2: जितनी देर में गाड़ी का पेट्रोल भर जाए आप लोग चल से चल वापस आ जाए प्लीज
3: ए हेलो मेरे लिए वेट करना हाँ
4: ये लड़की पागल है क्या इसको घर वालों ने अकेले कैसे छोड़ दिया भाई
5: नमस्ते मैडम मैं जाना ऑस्ट्रिया अकेले क्योंकि वैसे ही मुझे तुम्हारी कंपनी बिल्कुल पसंद नहीं है
3: ए कैसे लड़के हो तुम एक हिंदुस्तानी लड़की को मुसीबत में छोड़ के जाओगे
5: मदद मांग रही हो
3: कैसे लड़के हो तुम एक हिंदुस्तानी लड़की को मुसीबत में छोड़ के जाओगे
5: ठीक है यहाँ से 10 किलोमीटर दूर हमें एक दूसरी बस मिल जाएगी चलो
6: नेक्स्ट
0: It's all slotting in quite nicely. Character Dealer on the way for you from the movie Ready. For this week's Artist of the Week,

0: बता दूं? वो यहीं पर
1: यहीं है।
0: ऐसे नहीं बताऊंगा, तुम लोग एक दायरे में खड़े हो जाओ, जिसके कंधे पे रुमाल रख दो बस समझ जाओ।

चढ़ेगी क्या? 1 2 3 गाड़ी के बोनट से निकले परी, लौंडे आगे कहीं टिकते नहीं, बातें हैं कड़ी मेरी, लिख ले कहीं, चल निकले कहीं।

काम आता हर वीक, फिर भी जहां से गुजरूं हर बंदी के मुंह से निकले चीख। हाथ पकड़ पर दिल न लगा, जो कहती है करके दिखा, सुनने में आया है तू मरती है हम पे मर के दिखा। रहने दे, मुंह बंद रख, आंखें जो कहती हैं कहने दे, बहुत रुकी है आज तू पानी बन के खुद को बहने दे। शुभ बादशाह।

इतिहास की किताब पढ़ती है, वो तितलियां साथ रखती है, मेरी दुनिया अपार लगती है जब कंधे पे मेरे वो हाथ रखती है। इस प्यार को खोने नहीं दूंगा, तुझे खुद से जुदा मैं कभी होने नहीं दूंगा। खुशी के आंसू और बात है, लेकिन तुझको मैं वैसे कभी रोने नहीं दूंगा।